दिपदिप भयो निवृत्त किए सही मछो पेराई बस्ते तब त गाह्रो छ नि उसै।

0: मेरो लागि माइलका लागि त सुनसरी गाउँपालिका योनि मस्तक जरुरी सूचना जुमो बेला खेमरिदे गरम अवधिरी जेउ बेला सुनो फोनी कता अचुरी जेउ आउ बेला क वन जंगल ल मे लागिने मस्त ज सम्भावना पाए आउ ये जुने प्राकृतिक सम्पदा र तक्षेप्त ज सक्षम नाले वातावरण मिले नेला खेप्ता असर किने रि उमूल र थाउने भुछे ताने वायुमण्डल ल कार्बन मस्त ज तानाले भने जलवायु परिवर्तन ल असर सक्यने सुनो नखर नामे ल मे लागिने सज जिनी किनी लापरवाही सुनो चासो खेलगेमा दुख हिंदे को ठेल मेला की नाते जन धने में खेपा छुटी ताऊ हो फोकाई
1: विश्व छानियाला बल्ल मेला की ने पूरा रंगे नौ पूरा ले चौसे खेल गिरी
0: वन जंगल सर मेरा आयुर्वेदी बाली एमएल एमएल सचानियाला ली उसको कर पोते राले पार बजे हटे ही
1: सलाई लाइटर सियाला ले सचाने चीज राले जबांगजारो यामा देने पोलो गिने या इतने चीज रहे थे वन जंगल याल गिर आवाय
0: पिकनिक वन रोज बाको ने सचान सो चिन्नी मेले चौसे सही देगी खिलाई वन जंगल ले उसको छानने का एक बारी को चुरोद विधि ओरे बने कुबाज जंगे माचे ही
1: नंथर नंबर लीजियो वन उपभोक्ता समोराय सामुदायिक बने होंगे हमले से अनुगमन बिने व्यवस्था चौसे गिरी है
0: गेट वो छाने लाखोरे लो चौस की पौधी है होरी दे तो इनका एक जंग नहीं के लाई जो आप और नजरे बने हैं गेम ये लो ये जंग नहीं के माला ये और उन्हें लायो के माली ये
1: वन जंगल से जुड़ी सी गेम बारी लो बाली नाली कुछ ला चुली यात्रा रोस चौस चुनी ने चौसो सहरे के खेले है
0: वन जंगल मेला की के माई ये मेला दिखी पार जना खरना नारो मिली देखो नहीं साना जंग नहीं के सही
1: बता सो चुनी जो बेला को हिजिन के कोटल ने की सतांगी ने एनोखी मछिनी
0: मेला की निमित्ताए गे मने गे बचिए सुनो अरुले मने गे बचिए
1: गे छो छामला पोयाला मेला की उगिशन की ने गे छोटा ओडा कारे ले परहरी कारे ले सर्ज सुन्छरी गाउ पालिका गाउ कारे पालिकाए उमी कारे ले लो खबर गिरी है
0: अनुरोध सुन्छरी गाउ पालिका वन वातावरण सज विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा

0: Optima Network, CIN.
1: मैदापुर समान हमी के नहीं भिन्न छा भन्सा देखी बजार सा

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड
1: मेरो लागि उमायुका लागि त सुनसरी गाउँपालिका योमी मस्त जरुरी सूचना झुङ्गो बेला खेमरिदे गरम ओबोतिरी ज्याउ बेला सुनो भोलि बतास ओचुगुरी ज्याउ आउ बेला क वन जंगल ल भे लागिने मस्त ज सम्भावना पाए आउए गुनी प्राकृतिक सम्पदा र सक्षेप्त ज सक्षम नाभे वातावरण मिलेने ल घेप्ता असर केने रि उमुल र थाउने भुछे तामे वायुमण्डल ल कार्बन मस्त ज तानाघे भने जलवायु परिवर्तन ल असर सकिने सुनो नाखार नामे ल भे लागिने सज जिमी बिमी लापरवाही सुनो चासो खेलगेमा डुख को ठेल मेला कि नाटे जन धनी मे खेपा छिपी ताउ होकाई वन जंगल सर मेरा आयुरी बानी एमएल एमए ओछो छानेला लिउसोकर पोतोराले पार जगे रहते
2: सलाई लाइटर सियाउला मे सचाउने चिज राले जबाङजा र यामाडेले पोल गेले या इतौ चिज र रहेते वन जंगल याले के भाबाय
1: पिकनिक वन भोज बाको मे सचाउसु छिन्ने मेले चाउसु सैदे कि खनाले वन जंगल ओछो छान्ने दैके बारीको चुरोद दिदि ओरे बनै कोबा
2: नानथार नाम लिजौ वन उपभोक्ता समूह राई सामुदायिक बने हो नि हालले चाहिँ अनुगमन दिने व्यवस्था चौसर गिरिए
1: गेछो छानेला खोरे ल चाउसी खोलिए होलिदे तरिम गाई गेजम निकेलाई जु अब नजिरे बनाए गेम या ल गेजम निके नलाए औले नायो के नाइए
2: वन जंगल स जुडिसी हो गेम बारी ल बाली नाली कुचुला चुली झ्याक्रा रस चाउसो छिनी ने चाउसो सैले के खेले या
1: वन जंगल मेला दिके नाइए ने
2: ओडा कार्यालय प्रहरी कार्यालय सर सुनसरी गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका कार्यालय खबर दिए
1: अनुरोध सुनसरी गाउँपालिका वन वातावरण सज विपद व्यवस्थापन समिति कोबाङ रोल्पा